लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इतना रोमांचक दृश्य कई सालों में नहीं, कई युगों के बाद को विरला व्यक्ति देख पाता है। जिसने जन्म जन्मांतरों तक परमात्मा की साधना की हो, जिसने जन्म जन्मांतरों तक परमात्मा को चाहा हो, ईश्वर पर मनन किया हो, ईश्वर को पाने की इच्छा उसके अंदर इतनी तीव्र हो जाए कि उसके बिना एक पल श्वास ना ले पाए, वो साधु संत गोपियां बन के आए थे। बाल श्री कृष्ण ने माथे पर कस्तूरी का तिलक लगाया, ज्ञान विवेक बुद्धिमानी का प्रतीक है ये। माथे पर अर्थात दोनों नेत्रों के बीच में नाक की सीध में ऊपर जाएंगे वहां पर ये लगाया जाता है तिलक, अर्थात हमारी तीसरी आंख वहां पर है। कहने का तात्पर्य है, बाहर की आंखों से तो बाहर का दृश्य देखते हैं, अपनी अंतर की आंख को खोलकर अपने भीतर झांको, अपने हृदयवासी के दर्शन करो। परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है, इस बात की अनुभूति करो। नाक पर मोती है, मोती कैसे बनता है? जब वर्षा की पहली बूंद कोई सिप्पी धारण कर लेती है, वह बूंद मोती बन जाती है। विचार कीजिएगा, ये भी कहा जाता है कि उस समय जब वर्षा की बूंद सिप्पी में जाए, उस समय स्वाति नक्षत्र हो आसमान में, अर्थात चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में हो, निश्चित रूप से वह जल की बूंद मोती का रूप धारण कर लेती है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपको अपने भीतर झांकना है तो अपनी आंखों को नाक की सीध में केंद्रित करें, फिर धीरे धीरे अपने नेत्रों को बंद करें, आपको अपने भीतर नजर आना आरंभ होगा। ये तरीका है, एक कला है, एक आर्ट है, एक टेक्निक है, किस प्रकार से भीतर देखें। हाथों में कनकन, वो भी एक नहीं, वह हमें याद कराते हैं भगवान कृष्ण के वचन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारता, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, धर्म की रक्षा हेतु धर्मिक लोगों को बचाने के लिए, साधु संतों को बचाने के लिए, ओ अधर्मियों का विनाश करने के लिए मैं बारंबार अवतरित होता हूं, प्रकट होता हूं। दूसरा वचन था, पहले वचन की व्याख्या करने की आवश्यकता भी नहीं, आप जानते हैं।

दूसरा वचन था जो भी अपना मन मुझ में लगाएगा, जो भी अपना ध्यान मुझ में लगाएगा मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। और तीसरा वचन, तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर दूंगा। पहला तो वचन दिया, जब जनता में धर्म की हानि हो, हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। दूसरा कह दिया, जो भी अपने ध्यान मुझ में लगाएगा उसकी रक्षा करूंगा। खाली दुख के समय नहीं, सुख के समय भी, हर वक्त हर समय आपका ध्यान अगर परमात्मा पे है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। यूं बोलिए, आपके संरक्षक बन के आपके साथ रहेंगे, आपके रक्षक बन के आपके साथ रहेंगे, आपके बॉडीगार्ड बन के आपके साथ रहेंगे। तीसरा, अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। जब आपने अपने आप को बोल दिया, भगवान मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं, उसके बाद अच्छा हो या बुरा हो डजंट मैटर, आप तो है ही नहीं, आपने अपने आप को दे दिया है इन टोटैलिटी। छाती पर कस्तुंब नाम की मणि है, कहते सागर के मंथन से वो मणि निकली थी बाहर, और उस मणि को भगवान विष्णु ने अपने छाती पर धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु के अवतारी तो है, आठवें अवतार। छह सितंबर 1977 को भगवान श्री सत्य साई बाबा जी ने अपने विद्यार्थियों के बीच में अचानक अपने हाथ से घुमाया, हाथ में एक मणि आ गई, सबको दिखलाई वो मणि, बोले ये वही मणि है जो भगवान श्री कृष्ण अपनी छाती पर धारण करते थे। उस मणि की चमक हजारों सूरज ज्यादा थी, radiance was equal to or more than the radiance of thousands of suns. हृदय में आनंद है, मणि आनंद का प्रतीक है, हृदय से लगी हुई है, हृदय में आनंद है। अपने हृदय में आनंद को स्थापित करो या उसको अनुभव करो, उसकी अनुभूति लो। मणि को यह भी कहा गया कि प्योर कॉन्शियसनेस, विचार कीजिएगा। शरीर पर पीतांबर धारण किया, पीला वस्त्र को नीला नहीं किया। आज के लोग काले कपड़े बहुत पहनने, काला भी नहीं किया, केवल पीला। क्या उस समय दूसरे रंग उपलब्ध नहीं थे क्या? ऐसी बात नहीं है। रंग का मतलब है, पीले रंग का मतलब है प्रकृति। प्रकृति का पीला रंग माना गया है और आत्मा का श्याम रंग। भगवान कृष्ण का शरीर पीले रंग में लिपटा हुआ है, अर्थात ये पुण्य आत्मा परमात्मा श्याम रंग जो है वो प्रकृति में है। आज के हम बोलते हैं सेव द नेचर, प्रकृति की रक्षा करो। विचार कीजिएगा, पीला रंग जो होता है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान के अनुसार वह आपके मन का संचालन करता है। कभी भी आप पीले कपड़े पहनोगे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और मन का संचालन भी ठीक से होगा। सर पर धारण किया है मोर मुकुट,

पहली बात है, मोर का पंख क्यों, कबूतर का क्यों नहीं, कौवे का क्यों नहीं? मोर के पंख में तीन रंग होते हैं जो तात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के प्रतीक हैं। दूसरी बात, कहा जाता है मोर के अंदर वासना रति भर भी नहीं है, नाचते नाचते वह विभोर हो जाता है, उसकी आंखों से जो आंसू निकल जाते हैं, मोरनी उन आंसुओं को ग्रहण कर लेती है और गर्भवती हो जाती है, कहा जाता है ऐसे। कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोई वासना नहीं है, वह योगी हैं। वो कह रहे हैं अगर तुम भी अपनी वासनाओं को त्याग कर लो, मैं तुम्हें अपने सर पे बिठाने को तैयार हूं। अधरों पर बांसुरी, बांसुरी किससे बनती है? बांस से। बांस क्या होता है? अंदर से खोखला, उसमें कुछ छेद किए जाते हैं, कुछ शेप दी जाती है, बोलते हैं दिस इज द फ्लूट। विचार कीजिएगा, बांसुरी कैसे बजती है? भगवान कृष्ण अपने हाथ से लेके अपने होठों से लगा के होठों से हवा को छोड़ते हैं, हाथों से नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वह आवाज, वह सांस जो आवाज, आवाज जो है एक आवाज का रूप लेके, मेलोडी का रूप लेके, राग का रूप लेके निकलती है, जिसको सुन के हम मोहित हो जाते हैं। गोपियां जलती थी बांसुरी से, कहती थी हे बांसुरी तूने कौन सी तपस्या की है जो कान्हा तुझे हमेशा अपने साथ रखते हैं, समझे? आप जलती थी, ईर्ष्यालु हो गई थी। अरे बांसुरी तू कौन सी तपस्या करी कि कान्हा तुझे अपने पास रखे? बांसुरी एक खोखली लकड़ी है जिसमें कुछ छेद हैं। बांसुरी हमारे शरीर का प्रतीक है, जितने छेद बांसुरी में उतने हमारे शरीर में हैं, आंखें, नाक, कान, मुंह। कहते हैं भाई अगर आप बांसुरी की तरह अपने अंदर खोखलापन ले आए, अपने अंदर से सारी वासनाओं को निकाल दें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोद, मद, मत्सर सबको निकाल दें, शरशक्तियों से रिक्त हो जाएं, अहम निकल जाए, तो भगवान आपको अपने होठों से लगाने को तैयार है। अर्थात जो भी आप बोलेंगे, जैसे बांसुरी बजती है उसी प्रकार से आप जो भी बोलेंगे वो आवाज आपकी नहीं, परमात्मा की होगी, भगवान श्री कृष्ण की होगी। अर्थात हिज ब्रेथ विल फ्लो थ्रू यू, अर्थात यू बिकम द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड। परमात्मा आपका प्रयोग करेंगे संसार के कल्याण हेतु। भगवान की आवाज, भगवान की सांस, भगवान की वाणी, भगवान के विचार, भगवान की गाथा सब आपके द्वारा संसार में प्रसारित होगी, प्रोवाइडेड हम अपने आप को रिक्त कर लें। विचार कीजिएगा,

आस पास गैया घूम रही होती है, गौ माता, गाय का अर्थ है इंद्रियां, भगवान कृष्ण को कोई माखन की कमी नहीं थी घर में, लेकिन चोरी करते थे माखन गोपियों घर जाके, अर्थात गोपियों का हृदय इतना पवित्र था कि कन्हैया उनको प्रसन्न करने हेतु वहां जाते थे। तो विचार कीजिएगा,

श्री कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित करता हो, गोविंद का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों का संचालन करता हो, हरे का अर्थ है दुख हरता, मुरारे का अर्थ है जिसने मुर नामक राक्षस को मारा हो। हे नाथ, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। नारायण, मैं नर हूं, आप नारायण हैं प्रभु। वसुदेव, वस्तु का अर्थ है प्राण, देव का अर्थ है रक्षा करने वाले, जो हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं।

इस महामंत्र का जब आप जाप करते हैं, अपने नेत्रों को बंद करके परमात्मा का ध्यान लगाते हुए बाल श्री कृष्ण का जैसा बताएगा, जिसकी व्याख्या करी गई, आपके मन में प्रसन्नता आएगी, आनंद की अनुभूति होगी। आप सुध बुध घोर बैठेंगे। मंत्र क्या है एक बार फिर से,

श्री भगवान कृष्ण के अलंकार पे ध्यान देने से ही आपके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। केवल उनके अलंकार पर ध्यान दीजिए, उसके आंतरिक अर्थ पर ध्यान दीजिए। बार बार मनन करने से आप कृष्ण में हो जाएंगे, तन में आपका खो जाएगा, जैसे गोपी